0: रेडियो प्रकृति एफएम 93.4 मेगाहर्ट्ज।
1: नागरिकता भए पुग्छ हरेक घरको खुशी, घर घरमा एलजी, एलजी लाइफ्स गुड।
2: परिवे

0: करेसा बारी चोक बजारतिर जाँदा वा घर बाहिर रहँदा विशेष सावधानी अपनाउने।
1: डेंगी रोग बारे सचेत बनाऊ।
2: नेपाल रेड क्रस सोसाइटी काठमाडौं जिल्ला शाखा।